0: जी जी
1: तो
0: जी
1: चिक या मना जो तो जो दर या तो चिक या जो शुरू ही
0: लेस लेस है अनि माय पे भी दुलिया लंगार इंजी सब जो ना रोला
1: लेस लेस है ना दामा यू ना
0: ओ ओ
1: दामा देश
0: लेस
1: ले को लंगार दे चिंदा शायद वो तो जा ओस तो दे इन्हें ले कुछ से आ चिंदा ता शायद आन शोल या चिक मिये या कुछ मिये गाहु समाले रांस दे कुछ देख रहे तंदे प्रोजेक्ट दिस योर मिले या दिस दिस दोदा दो दिस दिस आयु दो सिग दो शिमे जिता लंगो दो आ दे जी चने ता कैसे नंबर मेरे सुरक्षा मरे ता
0: आ ले लेस लेस है